परी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शैवजु अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

कौ कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज सेतज कीनी

भयो शंकर एक ऐठा सगरी सिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल काओ एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला।

एक है बेबिचार कछ नाहे, जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आयस प्रभु को पयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते

अर्जन हर गोविंद नाओ सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी,

बड़े प्यारे वचन है। मीत मित्र साजन, प्यारे सज्जन जड़े ने, सुत पुत्र बंध रिश्तेदार, पो होत ना साथ। साहब जी कहते ना चो कोई तेरा साथी नहीं है। इसट मीत बंधप इष्ट, मीत बंधप सुत भाई। फिर सुनियो, इसट मीत बंधप सुत भाई, संग बनता रच हसिया, जब अंति अवसर आयो बनियो है, उन पेखत ही काल ग्रसिया। साहब जी ने गिण दते ने प्यारे मित्र कोल ने, इसट मीत बंधप भाई सुत बनता रच, उदे नाल हासे खेडे सारे ना करिया। जब अंति अवसर आए बनियो है, जदो अंत समा आ गया, हसदे हसदे कहिंदे ने जी गल्लां करदा सी हस रिहा सी, एकदम ही अटैक हो गया। आखो सतनाम श्री, किसे ने बचाया, किसे ने साह दिता, ना ना बिलकुल नहीं है। इसट मीत बंधप सुत भाई, संग बनता घरवाली, संग बनता रच हसिया हस रिया, जब अंति अवसर आए बनियो है, उन पेखत ही काल ग्रसिया, कार कर अनर्थ बिहाजी संपे, सोइना रूपा दम पहाड़ी को पहाड़ा मिलिया, होर सगल पयो बेराना। साहब जी कहिंदे बहुत कुछ इकट्ठा कीता नर्थ करके, एक तुहानू सौखा बचन आ जाना, पहाड़ी को बहो पहाड़ा मिलिया, होर सगल पयो बेराना। ये पहाड़े का बोल तुहानू पता है ना, कई बार आम तुम पंजाब चो कित्थों इत्थों ही सारे आप उत्थों ही आए हैं, अजे जांदे ही रहिंदे आ। कई बार मझ दा कट्टा कट्टी मर जाए ना, उहनू कादे ते लाउंदे ने पहाड़े ते, हरिया जा पा के आटा धूड़ दिंदे ने, ते जदों धारा कढ लैंदे ने तो चक के पासे कर दिंदे, होर उहदे पले की पिया, कुछ भी नहीं पिया, बस वह पहाड़े ते मिलन वाली बात बन गई है। साहब जी कहिंदे कीता सारा इकट्ठा ही है, बस मिलिया तेनू वह पहाड़े के बराबर है, पहाड़ी को पहाड़ा मिलिया, होर सगल भयो बेराना। तीर शेर का दिहाड़ी बेमान, अवर वस्त कुछ पाहे अमान, जड़ियां कठिया कीती तेरे को मानता चुकी बैठा, वह तेरिया थोड़ी है, तू तो बस आ तिना क शेर का सवेरे खा लिया, दुपहरे खा लिया, शामी खा लिया, बस इनी कम आ, इदो वाद कितने काम ही कोई नहीं जे गुरमुखो, बाकी तो उन्होंने राखी करने वास्ते बैठा, इधरों ना आ जाए तो इधरों ना आ जाए, गल तो इन्नी की होर तो कुछ वध नहीं है। आखो सतनाम श्री, तीन सिर का दिहाड़ी बेमान, दिहाड़ी ते तेनू घर वाले ने रख लिया, बस वो दी राखी करी जा रहे। साहब जी अज कृपा करते ने, मीत साजन सुत बंध पा, को होत ना साथ, एक निवाहु राम नाम, दीना का प्रभनाथ। निवाहु निभण वाला, नाल निभण वाला, बाकी नहीं निभदे, वो कौन है, राम नाम दीना का प्रभनाथ, दीना के गरीबां दा वो मालक है, गरीबां दी वो रखिया करन वाला है। सवेरे रागी सिंह निरखल अज जां कल शब्द पढ़ रहे सी, दीना नाथ सुनो अरदास, वो गरीबां दी जोदड़ी सुनदा है। चरण कमल बोए थ भए, लग सागर तरयो तेहे, बोहित नाम है जहाज, बोहे थड़ा हर चरण, मन चढ़ लंगी है, आठ पैर गुण गाए साधु संगी है। चरण कमल गुरु दे, चरण कमल दे प्रतख चरण ने, नाम चरण ने, संसार समुंदर तो तार दंदे ने। भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो ने, जिन्हां दे अंदर सच्चा नहीं है जी प्रेम है, उन्हां नूं मिल गया मेरा गुरु। पहला ही रंभ तां इत्थों कीती सी, प्रेम सी भीखण शाह दे अंदर, तां कलगियां वाला पातशाह मिल गया। जिवें हुण प्रेम होवेगा, तिवें गुरु की प्राप्ति होवेगी।

आप सारे रब वर्गिया जुड़िया हुई संगतां बैठे हो, बड़ा मन प्रसन्न हुंदा जदों आप जुड़ के गुरु चरणा विच हाजरियां भरदे हो ते कीर्तन सरवन करदे। आओ सारे रल के सतगुर के चरणा दे विच जोदड़ी करिए। गरीब नवाज, तेरे तो बगैर साड़ी थां कोई नहीं। मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही। जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ते सच जाने हो, संगत दी कीती हुई अरदास कदी सतगुर मोड़दे नहीं, क्योंकि बाणी विच सतगुरां दा वचन है, मोर लाई है, बिरथी कदे न हो गई। जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुण तास। ते आओ सारे रल के थोड़े सदके साडा भी भला हो जाए। गुरु की संगत विच जुड़िया हुई रूहां दे विच पता नहीं केड़ा ऐसा परमेश्वर दा प्यारा बैठा है जिदे सदके साडा सारिया दा भला हो जाना है। सारिया दी झोली गुरु सतगुर पातशाह ने भर देनी है। ते आओ सतगुर नूं बेनती करिए। गरीब नवाज, बस साडी तेरे तो बगैर होर थां कोई। एक दुनियावी प्यो नूं जदों बच्चा तरला करदा है ते प्यो ओदी कोई गल नहीं मोड़दा, सारिया दुनियावी वस्तुआं नाल ओदा भंडार भर दिंदा है। ते गुरु नानक दा घर तां बख्शीशां दा घर है भाई। जिवें भाई नंद लाल जी ने आख्या, कलगीधर पातशाह दे महान श्रोमणी कवि अपनी वचन विच लिखदे हन, सच्चे पातशाह नहीं खाली गया कोई शोहा जो तेरे दामन से, पातशाह तेरे घर तो तेरे दर तो कोई शोके भी लंघ गया वो भी खाली नहीं गया। मैं भी उसी बंदे का बंदा हूं दामनगीर। गुरु नानक, आओ सारे करो कृपा, ते जपो नाले ते सरवण करो।

इतनी हाजरी प्रवान करो, सारी संगत आशीष बख्शियो। आप जी के चरणों में साडा तरला है कि गुरु की संगत आशीष बख्शे। अखीरले श्वास तक सतगुरु अपने चरणों च रख के सेवा लेंदे रहन, किसी का मथाज ना करन, ते गुरु चरणों नाल जुड़ के जीवन बसर कर सकीए। लोक सुखीए परलोक सुहे।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए हरे अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन दया में ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नौखंड पृथ्वी बिराचर जीवाय मां उदास तपीसर थीवाय अग्नमाय हमत प्राण कनक सभैवर भूमदान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे

सगल कटां के अंतर जामी। अपने गत में जानो आपे आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर ना जान होए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ।

विकराल मिथ्या थी असु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवा हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुने मिथ्या सर हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र बेखद पे पर त्रेरुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बिगार गोदावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे

गोविंद भजन मन मृत सब काम जो कृपन के रारदाम तन तन ते जन जय घट बस्यो हर नाहु नानक ताके बल बल जाओ रहता वर्ग शबर कमावत मन प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेखना गाहू भीन

कथा अष्टपदी साधक संग मुखुजल होत सा संग मल सगली खोत साधक संग मटे अभिमान साधक संग प्रकट सुख ज्ञान साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा सा संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक की महिमा बरने गौन परानी नानक साधक की शोभा परम महे समानी साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग में सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतम हुंता भय सा संग असत मन पावे साधक संग माया ते भिन्न सा संग नानक प्रभु सुख प्रसन्न सा संग दुश्मन समेत साधु के संग महापनीत

ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित गौन मखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

अपने दास भाव कृपा करे तस दास को सब सोजी पराए सकल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सब गहावे।

ब्रह्म लहंते कैगुड़ दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कैगुड़ मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई गुड़ खाणी अर खंड कई गुड़ आकाश ब्रह्मांड कई गुड़ होय अवतार।

ज्ञानं प्रभुसुवे कई गोड़ पार ब्रह्म के दास तेन हो तातम प्रगास कई गोड़ तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गुण नाम रस भीमे अमर भये सा साधी जीवे कई गुण नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सास

ना बला तेरा रूपा सुंदर आभार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी गड़गड़ सुनी सरब मुखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक

संत के हाथे को रखे ना कोई, संत के दुख धान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तराए, संत के दुखन दे मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए।

ना सुख थे ठहराए संगे दुखी को ना ही ठाऊ नानक संभावे तलाए मिलाए संगा दुखी अद बीते टूटाए संगा दुखी कते काज ना पहुंचाए संगे दुखी को ध्यान फरमाइए संगा दुखी उजड़ पाई है।

अमन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी थारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनक जुगतराज थाप उप अविनाशी नाय खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाय था नानक जाप जिन प्रभ जाता सुन स्वभावंत सकल संसार त्रेत्र मंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जपय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भाग्य नाम जपत पावे बिस

सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक मन प्रति ठाकुर के सेवक की निर्बल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग, सेवको प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक से जिस दया प्रभु धारे नानक, सो सेवक साथ साथ संभारे, अपने जन का प्रदाटा के अपने सेवक की सर्वर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को राम जपाई।

मैं मूर्ख मना सुतमीत गुटा मार बनथानते कहाओ तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तारंते कहाओ कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदगी तुसबुझे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना गुर की मातू ले याने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गर्भिख जाहे आप जब अबरा नाम जपावो सुंद गैद रात गत भावो सार बुद्ध सतर को नाव सह सुभाए नान गुन गाव त्रि उतर समैल बिन जाए होमे मिख फैल वे चंद बसे सुभनाल सास गरा सर नाम समाहल शाड़ सियान बसगली बना सास संग बामे सज तना हर पुंजी संज करो व्यवहारी हां सुख सुख दर गया जयकार सर्व नरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सा राहे एक सिमरे को मन आहे एक गुन गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत

एक वस्त दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभक्षांत दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि प्रकार करतार भग जना के प्राण आधार जो जो जपै सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत अम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए एक निम हर के गुण गाए अनगराज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाई बबो जन गाबर संगीत रसना जपती हर हर नीत परिसो करनी सो बात मन हृदय बसे पूर्ण गुरमन सा संग प्रभु देव।

आप अष्टपदी जब अकार्य काशना दृष्टिता पाप पुंत कहते होता जब तारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संगमात जब इसका वर्ण चेन्न जाप तब हर सौ कहु किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कहा किसोबत परमापन खेला भ्रतीजा नान करने हर न दूजा जब होबत प्रभु केवल तनिता बांध मुगत कहु किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहु कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभा तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रहे तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन जलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपने आसंत है जन्म मरण कहो कहा विनाश जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जीव जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किसी भूषण रेखा जब नाथ निरंजना गोचरा गाते तब कौन छुटे कौन बंधन वादे आपने आप आप यह चर्जा नानक अपन रूप आप यह प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहा हो क्या तोता जय निरंजन निरंगा निर्बान गौन गौ मान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीता शाल क्षेत्र लगत गौ कीस जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूखम त्रपताप करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माये बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकलापे पर भीन तय वेद देव कहा गौ चीन जब अपने आप आप उतारित सगन अब सगन कहा विचारा जय अपनु चापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिये चेरा विषमन विषम रहे विषमाद नान अपनी कत जानू आप जय शाला।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात से भावित सिठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो आप नु सब जगत परोए जागो प्राप जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तदका बेता नानक सकल सिठ का जेता जी चंद्र सबता के हा दीन दयाल अनाथ को नाद जिस राखे तिस कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो में सारा है तिस्ता जबर कहा तिस्ता अबर कहा को जाए

नान विद पावे तलय समाये इसे वह सो ना ही बुरा बुरा कह हो कि न कश करा आप ला कर तू तत् ने किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आपन संग्रह।

गुणगोविंद अमरदरस भियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के

0: गुरु जी की फतेह।
1: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु साहब जी। हो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शै भंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच है सोच न हो गई जे सोची लख वार चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा अवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता एक न चल नाल केव सचार होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक।

के अफवल गुनाह है के सहान सा है के कारण को निध है के रोजी देहांत है के राज करहीम है के कर्म करीम है।

चंद्र के सर्वं कलि में के परमं फही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तुम अमर रुजु है हमें सल सलाम है सलीख तुम दाम गनी बोल सी कहते है गरीब बोल प्रास्त है।

दिखावेंगे। सास मुंह प्रस्थान फिरे जग सत्तर सबे अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गिरिंद्र नरात जम तर लोग राज करेंगे। कोड़ स्नान के

सिंगरिए। पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह पे आशा, तुम्हें छाड़ कोई अमर न त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

देवदृष्टि एक सर्वो मेरि सानो पठाय सात सुन नैनो पठाय श्रीलाय सुनो सतवाणी

हरि हो। कृपा दृष्ट जदो कृपा दृष्टि मेर भरी नजर नाल मेरा गुरु वेखदा है कृपा करदा उते कृपा विशेष हुंदी है। जिहड़े साहिबां दी पावन हजूरी अंदर सज जांदे ने अमृत बाणी सरवण करदे ने कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो। तन मीन जो शरीर निहरि हो मीन जो वेखणा जिस वेले आए हुए सिख ते शरीर ते गुरु की नजर पैंदी है कृपा हुंदी है ते उस वेले ताके ताप तनक तनक थोड़े जे समय दे विच आधियां व्याधियां उपाधियां तन्ने ताप जड़े ने ओ मेरे गरीब निवाज कृपालू दा तार जी खत्म कर दिंदे ने। सतगुरां दी अपार कृपा जे अमृत वेले आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो करके

षोडह गुरमुख मन पतीज पतीना मनूर मलीना। काला लोया जड़ा है बिलकुल जंगालिया पारस नू छोंदा है गुरमुखो कंचन बन जाता है। यह सतगुरु की वड्याई है जड़ा जीव इदा दी आके ते गुरु गुरु का जाप जप लवे महाराज उन्हू रूप देंदे ने रूप साच रते जड़े सच विच रते जांदे ने अहनस दिन रात बैराग उन्हां दे अंदर बैराग पैदा हो जांदा है। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। महाराज कृपालू

सकै पछाण कर, को सकै न जानी अल्प गुरु आसै मती, किम करै बखानी रल जह इम सगल ही।

गुरदेव जी रलावा वो जाने जे रलावा ता महाराज तुहाडी बाणी अमृत बाणी हर हर तेरी ता मेरे गरीब नवाज कृपालू दा तार गुरु अर्जन देव जी ने सानू बाणी दी दात दे दिती। फिर अमृत बाणी दे के साहबाने बोल कहे ने गुरबाणी गाव है भाई ओहो बोलो सफल सदा सुखदाई। गरीब नवाज अज गुरु अमरदास जी यही तां बोल कहिंदे ने चौह जुगम है अमृत साची बाणी पूरे भाग हर नाम समाणी। पूरिया भागा करके राम दे विच जीव दी भेदता हुंदी है। सिद्ध साधक तरसै सब लोए सिद्ध लोग साधना करन वाले सब दुनिया दे लोग तरसदे ने पूरा भाग प्राप्त होए पूरिया भागा करके गुरु खालसा जी ये प्राप्ति होंदी है। सावक

चवै की थो भवन पनीता खुबड़ी को थाए मिठी गलन को मंत्रिया नानक से उबरे जिन्ना भाग मथाए सुतड़ सुखी सुवन जो रते सह अपने प्रेम विशोहा तनी सो अठे पहर लवन सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जा गन जे रसना नहामी उचारने मृग तिसना पेख भुलने उठे नगर गंधर्व जिनी सच आराध्या नानक मन तन फब पत ते उदारन पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उधारे नानका सो सिमरे सृजनहार दूजी छोड़ कुवाटड़ी कस सौ चित लाए दूजे भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करण वन जा रिया सच वखर जिनी लदे आसे सचड़े पासार पंथा प्रेम न जानई भूली फिर गवार नानक हर बिसराए कह पौंदे नरक अंधियार माया मनो ना विसरै मांग दमा दम सो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करम तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप किरपाल सब दे अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल खंबवा कंदड़े जेला किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सजन टोल

संगलाई। मारू मस्त अंग में वारा बरबर जन को सके वारा खौ खटे भौरा आनंद गाय अष्ट माल कौ सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अठ सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही।

थापि सालु सारग सागरा और गोंड गंभीरा अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ अमीरा कष्टम एक राग वै गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी ऊचा सुर सुह पुन कीनी मेघ राग स्यों पंचो चीनी बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नट्यो जल धारा

दूर कथना कथि न आवे तोटा कथ कथ कथि कोटि कोट कोटा देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुकम हुकम चलाए राहो नानक विगसेवे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखे मंगह देह दे दात करे दातार फिर के अगे रखी है जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर नानकी वह जानी आए सब आपे सचे आर थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनीए मन रखीए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया सुमाई गुरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाहीं कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विन भाणे के नाए करी जे तीसर ठे उपाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आर जा होरद सुनी होए नवा खंडा मिच जानिए नाल चले सब कोय चंगा ना उर खाए कह जस कीर्त जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुजय जे तिस गुण कोय करै सुनयाय सिद्ध पीर सरनाथ सुनयाय धर धवले आकाश सुनयाय दीप लो पाताल सुनयाय पोह न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनयाय दुख पाप का नास सुनयाय ईश्वर ब्रह्माइंद सुनयाय मुख सला हनुमंद सुनया जुग जुग तन भेद सुनयाय शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनयाय दुख पाप का नास सुनया सत संतो ज्ञान सुनया सड़का सुनान सुनया पड़ पड़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावे राह सुनाथ व्यस गाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मने की गात कही न जाए जे को कहे पिछे पिछताए कागद कलम न लिखन हार मने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मना सुर तुवे मन बुद्ध मना सगल पवन की सोध मने मोह चोटा न खाए मने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने मार्ग ठाक न पाए मने पात सिंह प्रगट जाए मनाय मगन चलै पंथ मनाय धर्म सिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावे मुख दुआर मनै परवार साधार मनै तरे तारे गुर सिख मनै नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरेग त्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल त्रम दया का पूत संतोख थाप रख्या जन सूत जे को बुझे हुए सुचियार तबले उपर केता पार तरती होर परै होर होर तिस्ते भार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया केता होए केता तान सवाल रूप केती दार जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दुरिया कुदरत कवन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाथी कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिवते दीवड़े आई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रह न रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन

नानक गया जापे जाए। धर्म खंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड काखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते नचंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पांदरेंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद बनोदया कोड़े आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुते अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कह पिछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सदां की।

जेते अंत पछोताई आए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम गोचरा तिरंत न पाया अंतु न पाया, किने तेरा अपनाप तू जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाने, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा गम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जनता सब तो दे उपायख, वेख परसने आया। लभ लोभ अंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली,

नेत्र अंध से सतगुर मिलै देव दृष्ट होई। हे सरवणो मेरा साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी, साचे अलख वडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए। हर जीव गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना, दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निध, तिस्तांत न जाई पाया। कहे नान कर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहिला साचे घर गावो, गावो ता सोहिला घर सच, जिथै सदा सच ते आवे, सचो ते आवे, जां तुद पावै गुरमुख जना बुझावै। यो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावै। कहे नानक सच सोहिला सचै कर गावै, अनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुन ते पानीत कह ते पावित, सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सूही महला पंजवां गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला पांचवा। तेरा कीता जातो ना मैनू जोग कितो, मैं निर्गुण यारे को गुण ना आपे तरस पियो। तरस पिया मैं रहमत हो सतगुर सज्जन मेले, नानक नाम मिले ता जी तन मन थी वे हरि। नानक नाम मिले ता जी तन मन थी वे हरि। सोठ महला पंजमा। मा दो हम ऐसे तू ऐसा, मा दो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसे, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा। हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहो। तुम सब साजे साज नवाजे जियो पेंड दे प्राण, तुम सब साजे साज नवाजे जियो पेंड दे प्राण। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान दियो मेहरबाना, तुम दान दियो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम करो भला हम भलो न जाने। तुम सदा सदा दयालु, तुम सखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे। कहो नानक हम ए हवाला राख संतन के पाछे, कहो नानक हम ए हवाला राख संतन के पाछे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, फिर कर बैसो हर जन प्यार। सतगुर तुम्हारे काशवार, सतगुर तुम्हारे काशवार। दुष्ट दूत परमेश्वर मार, दुष्ट दूत परमेश्वर मार। जन की पैज रखी करता, जन की पैज रखी करता। बादशाह सासा बस कर दी, बादशाह सासा बस कर दी। अमृत नाम महारस पीन, अमृत नाम महारस पीन। निरपा हो ए भजो भगवान, निरपा हो ए भजो भगवान। साध संगत में लकीनों दा, साध संगत में लकीनों दा। शरण परे प्रावे अंतर जाम, शरण परे प्रावे अंतर जाम। नानक ओट पकड़ी प्राव शाम, नानक ओट पकड़ी प्राव शाम। वाहे गुरु एक तू है, एक तू है, एक तू, एक तू है, एक तू है, एक तू, एक तू है, एक तू है, एक तू, एक तू है, एक तू है, एक तू, एक तू ही, एक तू, एक तू ही, एक तू ही, एक तू, एक तू ही, एक तू, एक तू ही, एक तू, एक तू। चाचरी शान गोविंदे मकंदे उदार अपार हरि ओंकार नाम में अकार।
कविन दे मकंदे उदार अपार हरि अंकारी नाम में अकाम टाडी दर्पा मंगण दर कदे न छोड़े टाडी दर्पा मंगण दर कदे न छोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती को प्रीत लगी हर नाम से राज मिल खुशियां कणी ढाए मुख ना मोड़े राज मिल खुशियां कणी ढाए मुख ना मोड़े टाडी दर दर कदे ढाडी दर पा मंगना दर कदे न छोड़े नानक मन तन चाओ इने तो प्रभु को नानक मन तन चाओ इने तो प्रभु को धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की भरा बेनती अपनी भगती लाए धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की भरा बेनती अपनी भगती लाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम पुलचक माफ तेरे चरण कमला बास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।